ओ बैलू तो कोल नहीं रो कट्टू तो बुडू तो ओ पोतेर बल्लाल ओ मजाल तो कोल नहीं रो कट्टू बुडू तो ओ अकेलू चकेलू बत्तू दूरू ने ओ करिए गेदाना उन जाने के नोडो